श्रोता मित्रों, आप सुन रहे हैं चौगुजराती कार्यक्रम गीतमाला 102.8 एफएम पर या तो www.divasfm.com पर। बे अटपटाओ खाणाए वाता है माथी एक नो जवाब तो हम फटाफट आवी गयो छे। अरे वाह, केव पड़े सौथी पेलो ए मा तो प्रश्न ई छे, कया वगर आवी जाए हे के बोलाव्या वगर आवी जाए ना बोलाव्या वगर आवी जाए, ई सौथी पहेलो हतो। अने बीजो हतो सवाल, एवी कई वस्तु छे जे खरीदती वक्ते काळी, वापरती वक्ते लाल अने फेंकती वक्ते धोळी थई जाय। साव सहેલો હતો હે ને? અરે વાહ, નમસ્તે નમસ્તે, બેટફોર્ટ ટીમ હારી ગઈ।

ईशानी दवे ने कुशल चौकसी आप समरिया चौकुजाते कार्यक्रम गीत माला 102.8 FM ऊपर या तो www.divorcefm.com ऊपर गीत माला कार्यक्रम दर गुरुवारे आपनी समझ रजूआत करवाने पूरी कोशिश करे छे रात ना 8-10 कलाके अटपटो अखाणु आजनु आ प्रमाणे छे मोढ़ू छे पण बोलतू नथी मोढ़ू छे पण बोलतू नथी अरे वाह कई वस्तु हसे સ્ટુડિયો નો વોટ્સએપ નંબર છે 07568686863. તમે સાંભળો અને બીજાને સંભળાવો. હવે સાંભળીએ આપણે રૂપાની ઝાંઝરી સંતવાની ત્રિવેદી.

आदमी मुसाफिर है। खरेखर अति सुंदर शब्द। आप सामने आ जाओ गीतमाला 102.8 FM ऊपर या तो www.divasfm.com ऊपर। बीजू एक एवं ज किशोर कुमार नो पना आप और मोहम्मद रफी नो तो आना हाँ जरा क्वालिटी सांभवा फरी पाचा पण वगाड़ाई तेरे बिना जिंदगी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुहारे।
1: कहां पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।